0: खुलुमका जतखनाय टंगाय रंनो नरखनाय टंगो अल इंडिया रेडियो आगरतला ककबरक नि पांडा आं राकेश तिनि नि पांडाव सं रेडियो बिसिसु खुसी एबा 90 इयर्स पुमानत ए ककथाजे थैनि सालायनाय आ ककबरक ककते ककरबाय आबायथानि रेडियो बेलायनो सुबामुं टंगो सं तिनि खरकसा सिकरिंग नमांखा बरम गनां मनुसुदन देव बर्मानो हिगे सं पोलावनो सारनो खुलुमबो
1: औ खुलुमो जतत खनाय टंगाय दाखुकते बखुक सोंनो नरखनबो तै रिंगमानी बागे बलैखना हम चीनी ताको राकेश नबो।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्तिकर्ता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से LNG तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति

0: लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपये और डीजल का मूल्य 95.35 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली

0: दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की

0: नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। खबरों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन भी मिले हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स से, और ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है। उधर केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडमम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: এতক্ষণ শুনলেন দিল্লি কেন্দ্রের বিশেষ সংবাদ বুলেটিন।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा?
1: हाँ
0: क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकर योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मेडिकल नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नांगानुगु को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अनुष्ठान सुनते 103.7 MHz फ्रिक्वेंसि मॉड्यूलेशन प्रचार तरंगे आकाशवाणी बिलोनिया।
4: अरे मार्केट ट्रेंड देखा?
5: हाँ,
4: क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
5: सॉरी,
4: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है।
5: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
4: मतलब
5: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
4: अरे मार्केट ट्रेंड देखा
7: हा?

0: हाँ क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: आकाशवाणी बिलोनिया एखन सुनबेन देशबंधन अनुष्ठाने देशात्मबोधक गान। आज के सुनबेन रवीन्द्रनाथ स्वदेश पर्यायर देशात्मबोधक गान।

0: शाम तक आपको एक फिर एनटीए के पब्लिक मैंने प्रेस नोट के माध्यम से, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
1: इससे पहले आगामी नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा मध्य विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण के अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली चीन यात्रा थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह के लिए होर्मुज जलडमरों मध्य खुला रहना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 21 लोग मारे गए हैं और 45 घायल हुए हैं। यूक्रेन की आपात सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में मकानों, एक स्कूल, एक पशु चिकित्सा केंद्र और अन्य नागरिक भवनों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

के तीनी तो जिंग शावुई मानो तीनी हायुं नुकुं शाल ने पलाय जाबो बिशी ब्रुम ब्रुम नो तीनी हाय शालो हायुं नुकुं शाल ने पलाय जाबो तामने बागे ओ शाल ने पलाय जा जिंग जो तो नो शाय मानो नुकुं उनका चिनी लांग मनी कोतर कैसा हॉंग नहीं मानो कोतर कैसा नुकुं बाक्षा उनके आनुकुं को रामपुष्णि बियार फनंगी दंतुन बियाबा आनुकुं नाय थतो जुंसासा उनगी दंगु नुचांगी दंगु थांचा कुकै नुकुं को कोबबांगवाई क्या हुकाके जसर रामपुष्णि नांगु

0: এই গানটির মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ হলো। এতক্ষণ শুনলেন সুর মালিকা অনুষ্ঠানে বাংলা গান, শিল্পী ছিলেন আরতি মুখোপাধ্যায়, আকাশবাণী বিলুনিয়া। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে প্রথমে দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ, এর ঠিক পরেই শুনবেন রাষ্ট্রীয় সেবার অনুষ্ঠান বিবিধ ভারতী।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विजन का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से

0: के प्रतिनिधि हैं। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। केंद्र ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षण में 20 नमूनों में से 13 में वायरस पाया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विती दसर्न से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होके, बेफिक्र होके मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे। तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
2: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशिया जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: जी, मेरा नाम वर्षा धगट है जी। मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई
0: यानी मायके का
1: हूँ
0: लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में ना
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूं, टीवी टेलीविजन करती हूं, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूं, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूं, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू
0: और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा
1: जी।
0: जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है।
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और
1: ये हर
0: सचमुच
1: महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है। जी
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो
1: जी
0: हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है ना?
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल
1: जी
0: मिलता
1: जी
0: है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खास तौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है। जी
0: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपके पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी। कहाँ से फोन लगाया
1: हाँ,
0: आपने?
1: नांदेड़ से।
0: नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके
1: हाँ,
0: बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउसवाइफ हूँ
1: हाँ
0: मैं। हाउसवाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर
1: हाँ
0: परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो
1: हाँ
0: सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना।
1: हाँ
0: और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है। परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर
1: आसानी
0: सकते हैं। तो बताइए
1: हाँ
0: आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ मैं काम चोर मूवी का तुझे संग प्रीत लगाई करना।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ,
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको? अरे
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल
0: वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सहेली सुनती हूँ
0: और हेलो सहेली भी सुनती है
1: और हेलो सहेली।
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली। कौन
1: हेलो सहेली,
0: सहेली बात कर रही है?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी। मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी। मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ,
0: क्या बात है, बहुत
1: इसके लिए
0: अच्छी
1: समय
0: बात।
1: निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं
1: जी।
0: आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं, उन्हीं के
0: जी
1: आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है। बहुत
0: जी
1: महत्व है सभी के लिए जी
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे
1: जी
0: जीवन का आधार है ना। और हम
1: बिल्कुल
0: महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना।
1: जी, बहुत
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे। हेलो सहेली, सखी सहेली, बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है,
1: जी।
0: तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली,
0: नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी,
0: जी कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से,
0: शिरपुर से फोन लगाए।
1: शिरपुर जैन।
0: जी
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में? मेस चलाती हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती खाने को, आते जाते वो अच्छा खाना बनाया बोलते, कभी कम ज्यादा हो जाता।
0: और सचमुच जब
1: हाँ
0: कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ हाँ खाने के तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें
1: हाँ
0: बिल्कुल भी ऐसा नहीं
1: खुश हो
0: लगता कि
1: जाते,
0: मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत मेहनत पे फल मिलता, ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ
0: और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश,
0: हेलो फरमाइश।
1: गाने सुनते हो तो रहता रेडियो दिन
0: दिन भर रेडियो चालू
1: भर।
0: रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो
1: हाँ,
0: सहेली, क्या
1: आलो साइली।
0: नाम है आपका?
1: राजबाई, राजबाई धाकड़।
0: राजबाई धाकड़। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से। हाँ,
0: बड़े गांव
1: गुना जिले।
0: जी। तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं,
0: क्या बात है,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है। जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सचमुच यानी
1: हाँ
0: परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना।
1: अच्छा लगे। देवर है, देवरानी है, देवर के मौड़ा मौड़ी है।
0: चलिए,
1: और
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनते हैं,
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना।
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, क्या
1: नमस्ते। मेरा
0: नाम है आपका?
1: नाम सुनंदा है। हाँ,
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है। हाँ
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में
1: हाँ
0: बताइए
1: हाँ
0: सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात
1: हमें
0: है। घर में रहना यानी बहुत से आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना?
1: बहुत
0: और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत पसंद है। हमको
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए।
1: हाँ, लक्ष्मी विलास भोले,
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम खाली।
0: घर का काम करती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती हैं कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही
1: हाँ
0: जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे
1: हाँ
0: लोग
1: हाँ
0: खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए
1: हाँ
0: तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना,
1: हाँ
0: सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों
1: हाँ
0: को खुश रहना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती हैं आप कभी? खुद की खुशी का काम करती हैं आप? यानी खुद के लिए, जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही दिन में बच्चों का वो करते करते टाइम हो जाता
0: टाइम निकालना
1: है।
0: जरूरी
1: खेत
0: है।
1: में खेत है हमारा, खेत में जाना पड़ता।
0: खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने
1: हाँ
0: चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी
1: हाँ
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद हाटुई से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउसवाइफ हैं और रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, और जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं। लाइव फोन में, सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं, रेडियो में आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपेट लेते हैं, गान सुनते हैं, रेडियो का साथ जुड़े रहता है।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और
1: हाँ
0: फिर घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: हाँ हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर
1: मशीन से।
0: हैं,
1: हाँ
0: है ना?
1: हम अकेले सब सिमेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी, कि
1: हाँ कहिए।
0: खुद के लिए आप जीते हैं क्या? ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये 1 घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
1: हाँ करते हैं, 1 घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं
0: और उसमें आपको
1: और
0: खुशी
1: जब
0: मिलती है?
1: खुशी मिलते हैं। हाँ अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना, तो परिवार भी
1: हाँ
0: खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ
1: हाँ
0: जीवन
1: हाँ
0: जीते हैं।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: बस खुश रहिए,
1: हाँ
0: मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और
1: हाँ
0: आप
1: विविध भारती सुनते हैं जी।
0: जी, और आपने
1: दो
0: पसंद का,
1: महीना से छटपटा रहे थे। हाँ जी कब 2 महीना पूरा होगा।
0: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: सत्यम शिवम सुंदरम
0: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: जसमती मैया तेरे बोले नंद लाला।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए
1: हाँ,
0: अपने
1: सातारा
0: बारे में बताइए।
1: ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, ताज तालाब है, महाबलेश्वर है जी,
0: जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है, नटराज
0: जी।
1: मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी, हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी
1: हाँ,
0: ना आज कि फोन लग गया है।
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ, 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत
1: मैं
0: अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और
1: जी,
0: आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: मेरा 57 एज है दीदी, 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ, साड़ी
0: क्या बात है।
1: सेंटर में। हाँ, सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और
1: आप?
0: स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल सोया है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है, 11:30 बजे तक। हाँ, गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं
1: हाँ,
0: प्यारे प्यारे गीत सुन के।
1: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा

0: कैसा न्यूक्लियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है मेरा, छोटा ही है,
1: क्या बात
0: उससे
1: है,
0: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
1: ये बात है। नहीं तो देखिए, लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे
0: नहीं
1: सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना।
0: जरूरी है, बराबर है दीदी।
1: जी बताइए, कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती हैं?
0: बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूपों की रानी।
1: बहुत प्यारा गीत आपने चुना है, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
0: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग का लाना।

रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002. दूसरा नंबर है 2867028 2867028, 2867028. और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार सखियों के।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की दहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर लीं। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्य ने कक्षा में कदम रखा। अरे, अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा

दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थीं आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्या कक्षा और ब्लैक बोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्य भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। UPI पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके

कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर, उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुर मुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला,

तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है। मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे। वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर। सरकार ने लंबा अवकाश दिया है। पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी।

ने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। छाया गीत लग जागने हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। तेरे मेरे सपने अब पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को आवाज।
2: এতক্ষণ রেলওয়ে শোনানো হল বিবিধ ভারতের রাষ্ট্রীয় সেবার অনুষ্ঠান। আকাশবাণী বিলোনিয়া এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय व्यवहार और प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्र का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप की 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गुरुग्राम में भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान में 11वें विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेन्द्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना DMK के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आया कि
2: आज की खबर देख
3: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आया कि
2: आज की खबर देख
3: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आया कि
2: आज की खबर देख
3: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: यार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: হ্যালো, নমস্কার, সুস্বাগত।
1: নমস্কার দাদা ভাই, আমি
0: কে বল?
1: মাদ্রিদ থেকে নাগরদার বলছি।
0: কোন ছবি?
1: সুরের আকাশ,
0: সুরের আকাশে গানের কলি বুঝতে পেরেছেন কিছু? বুঝতে পেরেছেন কিছু? প্রেমের খেলা
1: মোটামুটি আর কি।
0: মোটামুটি আছে। ঠিক আছে, যাচ্ছে আপনার গানটি। নমস্কার।
1: নমস্কার।
2: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: दांतन के डॉक्टर कहलन कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ सड़न से बचाए।
1: हेलो नमस्कार, सुस्वागत हो, क्या बोलछेन?
2: जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार, बोलिए। शिमला से। और मौसम कैसा है भाई?
2: मौसम तो बिल्कुल साफ है।
1: हाँ मेरा यहाँ तो अभी बारिश रुका है।
2: अच्छा, आपकी तरफ तो बारिश हो रहा है?
1: हाँ हाँ, दिन अरे यहाँ तो दिन भर ज्यादा धूप था, अभी बारिश निकला है, कुछ ठंडा निकला है। बोले कौन सा मूवी का गाना सुनो आपको? उड़ी बाबा, नींद नहीं आते क्या आपको? कभी कभी हाँ, कुछ सुपाते तो नहीं सासे क्या पाई?
2: नहीं,
1: अच्छा ठीक है, तो गाना सुन लीजिए। नमस्ते।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: मार्केट ट्रेंड सुनने में आएगी
2: आज की खबर में पहले ही बोला ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
5: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: শ্রোতা বন্ধুরা, তখন শুনলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লাইফ ফোন ইন, মনের মতো গান, আর সাথে ছিলাম আমি সুখ। সবাইকে জানাচ্ছি আবারও অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং শুভরাত্রি। আকাশবাণী বিলোনিয়া এখন শুনবেন 5 মেশালি নানা রাগের গানের অনুষ্ঠান।
1: मार्केट के बारे में क्या
2: परफॉर्मेंस का बोलो,
1: द फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड देख,
1: सुनने में आएगी
3: आज की खबर देख, पहले ही बोला था ब्रो।
2: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन,
2: मेरे दोस्त ने बोला।
5: देवी जी की सुनो,
6: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
0: পাঁচ মিশাল অনুষ্ঠানে প্রথমে শুনব অতুল প্রসাদের গান, পরিবেশনায় সুপ্রীতি ঘোষাল, দুঃখিত সুপ্রীতি ঘোষ।

0: मार्केट के बारे में क्या परफॉर्मेंस का बोलो
1: बी द फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आया कि
3: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
2: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
2: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: ये बड़े प्राचीन गान परिवेशन है बुद्धदेव गुहा

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: द फ्यूचर
3: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
4: आज की खबर में
5: पहले ही बोला था ब्रो
3: माय प्रेडिक्शन इज
6: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
3: मेरे दोस्त ने बोला
7: देवी जी की सुनो
8: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
10: অনুষ্ঠানে এবারে শুনবেন দিলীপ কুমার রায়ের গান শিখা বসুর কণ্ঠে।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: नहीं तो फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर में
3: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
0: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
1: ये दोस्त ने बोला
2: देवी जी की सुनो।
3: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
4: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
5: आकाशवाणी मिलोनिया कौन सुन बिन हारानो दिन गान शिल्पी उमित कुमार

0: আপনারা শুনছেন হারানো দিনের গান, শিল্পী অমিত কুমার।
1: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: এতক্ষণ শুনলেন হারানো দিনের গান। শিল্পী ছিলেন অমিত কুমার। আকাশবাণী বিলোনিয়া, আপনারা অনুষ্ঠান শুনছেন 103.7 মেগাহার্জে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন প্রচার তরঙ্গে।
1: मार्केट के बारे में क्या
2: परफॉर्मेंस का बोलो
1: बी द फ्यूचर
2: मार्केट ट्रेंड देख
1: सुनने में आएगी
3: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
4: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
4: मेरे दोस्त ने बोला
6: देवी जी की सुनो
7: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें